0: राष्ट्रपति
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीतन रंजन दर्स
1: क्रिया रूपन पेखे नेतर
0: साध की टैल संत संग हेत
1: कर्ण ना सुने काउ की निंदा
0: सबते जाने आपस को मंदा
1: साध विख्या पर हरे
0: मन की वासना मंत्रे ठरे
1: जत पंच दोग ते रहत
0: नानक घोट मदे को ऐसा परस
1: सो जैसे ऊपर सो परसन्न।

0: कहो कहावे।
1: ऐसा हरक तैसा सोग,
0: सदा आनंद है नहीं वियोग।
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी,
0: ऐसा अमृत ऐसी बेखाटी।
1: ऐसा मान तैसा अभिमान,
0: ऐसा रंग तैसा राजान।
1: जो मिलता है साई जुगत,
0: नानक यो पर कहिए जीवन मुकत।
1: पार्वम के सगले ठाओ,
0: जित जित कर रखे तैसा तिन्नाओ।
1: ते करन करावन जोग,
0: प्रपावे सोई फन होग।
1: कसरे आप होय अंत तरंग,
0: लगे न जाए पार ब्रह्म के रंग।
1: जैसी मत दे तैसा

0: सोए।
1: जब लग जाने मुझते कछ होए,
0: तब इसको सुख नाही कोए।
1: जब जाने मैं किस करता,
0: तब लग घर बजोन मैं फिरता।
1: तारे को वरी मीत,
0: तब लग ने चल नाही चीत।
1: जब लग मोह मगन संग माए,
0: तब लग तरमराय दे सजाए।
1: लग कृपा ते बंधन टूटे,
0: गुर प्रसाद नानक हो छुटे।
1: बैस खटे लखोड़ तावे,
0: तिरकन आवे माया पाछे पावे।
1: अनुभव विज्ञा के करे,
0: थक थक मरे।
1: बिना संतोग नहीं को राजे,
0: सुपर मनोरथ व्यर्थे सब काजे।
1: नाम रंग सर्व सुख होए।

0: संत का दुखी अदबीज ते टुटे
1: संत का दुखी किते काज ना पहुंचे
0: संत के दुखी को ध्यान प्रमाइया
1: संत का दुखी उजड़ पाइया
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा
1: ज्यों साध बिना मृत के लोथा
0: संत के दुखी की जड़ किशना है।

0: संग हजूरे
1: जिसका साथन लिया मिलाए
0: नानक भक्ति नाम समाये
1: सो क्यों मिसरे जे काल न पाने
0: सो क्यों मिसरे जे किया जाने
1: सो क्यों मिसरे जिन सब कुछ दिया।

0: पाठ पैर प्रपेखो नेरा
1: ज्ञान बिन से अंधेरा
0: उपदेश हृदय बसावो
1: मानी छे नानक फल पावो
0: अलत पलत दो लियो सवार
1: राम नाम कर उरदार
0: पूरे गुरु की पूरी दिखिया
1: जिस मन बसे तिस साच परिख्या।

दान प्रसाद दान धन दान सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवा मत उची मत पादे राखे आप काल पुरख वाहिगुरु अपने पह दे सदा सहाई दतार जीओ श्री नकाना साहिब समूह गुरधाम समूह गुरधामा दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो निमाणिया दे मान नितानिया दे ताम नियोटिया दी ओढ़ने आसरिया दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर उदास बेनती आप जी ने कृपा रहमत की है। सब तो पहला आप दी प्यारियां संगतां वालों सच्चे पातशाह जीओ संगती रोज सच्चे पातशाह जी सुखमनी साहब दे जाप हुए हैं उपरंत सोदा रहरा साहब जी दे पाठ हुए हैं कृपा करनी पातशाह जी समुचिया सेवावां निभाउंदियां होया भुल चुक दी खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी दा भाव आईया संगतां दे दासरियां दे हिरदे ते वसाउणा इसे तरह संगतां तों अपने जापां दी सेवा लैंदे रहना सच्चे पातशाह जीओ कृपा करनी जी किरत कमाईया विच वाधे पाउणे सब परिवार में सुख शांति नाम दीआं दातां बख्शणियां सब दीआं गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनियां। रजिंदर सिंह भिंदर कौर वालों अपनी बेटी सुप्रीत कौर की तंदुरुस्ती वास्ते अरदास बेनती रहमतां प्रथ रखना सुखमीत सिंह वालों सच्चे पातशाह जी कारोबारां दी चढ़दी कला वास्ते जो बिघन आ रहे हैं सच्चे पातशाह जी कृपा करनी जी बिघना का नाश करना अंग संघ सहाई होना सच्चे पातशाह जी कारोबारा तरक्या चढ़दियां कला बख्शनिया किरत कमाईया विच वाधे पाउणे गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनिया सच्चे पातशाह जीओ ऐस वेले बख्शिया खजानिया विचों कड़ा प्रसाद की देख सज के हाजिर है करी पाक साल सोज पवित्रा हुन लाभ भोग हर राय आप जी का सीत प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपे श्री मुख वाग दी बख्श करो सही प्यारे मेल जना मिले आम दा नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या भैया काल की तब चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है

मैं यहर खा रहा वहां वो खुश हो रहा है इस दुनिया के रसा दे रस कस खाए पिंड कमाए भेष करे गुर शब्द न कमाए विष्टा माहे समाहा है। हुण जिन्हें दुनिया के रस कस खाधे है उन्हें गुरु शब्द धार नहीं किया गुरु शब्द की कमाई नहीं की। साहब जी कहते इस जीवन तो बाद इं समझ जितन योजना जूना है कि विष्टा अंदर पे संजी बहुतात दुनिया जीड़ी है ताइए कह साहब जी ने हैन विरले ना ही घने फैल फकड़ संसार जुग जुग मीठा विस भरे समय समय ते सारे इस जहर दे नाल लगे हुए है। को जाने जोगी राम को तू भाग विरले सतगुर ए संसार विच विरले जोगी तू भाग जिन्हें मलाप किया राम तू रमे हुए राम तू कि वाहगुरु तेनू मिलन वाले जेडे मिलने ने वो कोई विरले आ ते जिन्होंने तेनू जानिया कोई सहज जान है हर पछाण है सत गुर जिन चेते आ सहज अवस्था नू जानन वाले वो कोई विरले आ जिन्होंने सहज अवस्था नू माणिया है तेनू जानिया है उन्होंने तेन इस संसार के पछाण लिया है उन्होंने जिंदगी का कार्य पूरा हो गया है। सतगुर जिन चेतिया जिसने वो सतगुर साहब अपने चेते दे चेतना किया मेल रहो दयाल तै पै तेरे दुआरिया रख ले हो दीन दयाल परमत बहारिया। जिन्हें इं बेनती की सतगुरु मैं बहुत थां ते चारे पासे भटक गया मैनू कृपा करो जे रख लो ए मतलब उदे चेते च उनू जा दे। जिन्हें इं बेनती की प्रभ जू तो को लाज हमारी हे वाहिगुरु तेनू लाज मेरी है मेरी लाज रखी ए मतलब उदे चेते विच उनू जा दे। हर जू राख लिहो पत मेरी ये सतगुरु जी कृपा करो मेरी पत जिहड़ी ओ रख लो ए मतलब जिहड़ा इं बेनती करता है उनू ओ वाहिगुरु अकाल पुरख जा दे। जिहड़ा इं बेनती करता है हो अपराधी गुनहगार हो बेमुख मंदा मैं गुनाहगार हाँ बेमुख हाँ ये नहीं कि वह बेमुख जिन्हें अरदास कर लग्या आपां अरदास करदे हां कि उस तों पहला करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे। सतगुरु जी मेरे चित विच तुसीं याद नहीं इहदा मतलब इह नहीं कि याद नहीं आ रही संग सहाई सो आवै ना चीत जो बैराई तां सिउ प्रीत। वाहिगुरु जी मेरा चित इहो जिहा बुराइयां नाल लगा होया इहदा मतलब चेते आ रहा है ते इन्हां बुराइयां दे विच याहू जुगत बेहाने कई जनम नानक राख लिहो आपण कर करम। साहिब जी कहिंदे इउं उस वाहिगुरु अगे बेनती कर उहदे अगे अरदास कर जदों तू उहदे अगे इउं साहिब जी कहिंदे तैनूं सच फरमा रहा सच कहै नानक शब्द साचे और जिथे बेनती करनी है उथे तेनू वो सच्चा शब्द दे गए इस सच्चे शब्द दे राही इलाही बाणी विचों गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब की बाणी विचों जिवें आप रोज पढ़ते हैं

श्लोक आद गुराय नमः, जुगाद गुराय नमः, सत गुराय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो,

कांखियका दुर्स्तुहारो नानुपुन संगमहे उदारो सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभु के सिमरन गर्भ न बसै, प्रभु के सिमरन दुख जम नसै, प्रभु के सिमरन काल पर हरै, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरै, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभु के सिमरन अंधन जागै, प्रभु के सिमरन भावना व्यापै, प्रभु के सिमरन दुख न संतापै, प्रभु का सिमरन साधग संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नाव निद, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध, प्रभु के सिमरन जपत पूजा, प्रभु के सिमरन मनसा दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ शरानी, प्रभु के सिमरन दर्ग मानी, प्रभु के सिमरन हुए सो भला, प्रभु के सिमरन सफल फला, से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, प्रभु का सिमरन सबते उच्चा, प्रभु का सिमरन उदराय मुच्चा, प्रभु का सिमरन तृष्णा मुज्जा, प्रभु का सिमरन सबके सुज्जाए, प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माहे समाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जान प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी, सिमरन दे लागे जन आप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला, प्रभु को सिमरे से पारुपकारी, प्रभु को सिमरे तन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरे तन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा दे अंदन जाग, नानक सिमरन पूरा भाग, प्रभु गै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु गै सिमरन कबूना झूरे, प्रभु गै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु गै सिमरन सहज समानी, प्रभु गै सिमरन ने चले आसन, प्रभु गै सिमरन कमल विगासन, प्रभु गै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन कहो प्रभ मया, नानक तिंजन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन पहे सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीचों कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की यो सगले आकारा, हर सिमरन में आप निरंकार, कर कृपा से आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया।

नानक हे प्रभु साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीतना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय जय महाप्यान दूत जम दलै तै केवल नाम संग तेरा चलै जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम किन माहे उधारी अनक पुना चरण करत नहीं तरा हर को नाम कोट पाप पर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव सुख नेरे सगल सठ को राजा दुखिया हरखा नाम जपत होए सुखिया लाख रूरी बंद ना पर हरखा नाम जपत निसु तरा अनक माया रंग तिख ना बुझावे हरखा नाम जपत अगावे जे मार्ग ए जात अकेला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइय नानक गुरमुख परमगत पाइय छूटत नहीं गोड़ लग बाही नाम जपत पार पराही अनक

का चीपीत मन हर के नाम की महिमा मूच नानक नाम द्रे पसद बह मूच बहुत सियानब जमका पाओ व्यापे अन्न जतन कर त्रिशिन्न त्रपै

रे तुमरी कृपा में सुख ने रे, कोई ना जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सुतरतारी तुम ते हो सु आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा गुरबानी सलोक दीन हार प्रभ छोड़ का लागे आन सुवाए नानक कहू ना सी जाई बिन नामे पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्तकान बिखोट गवावे एक बीना दे दस भी हर ले तो मुड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर सिंह नाही चारा ताको की जय सदन मसगारा जाके मन लागा ब्र मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा जिजन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत शापनी दे रास घात पीत बरते अनंत उलास

कथा अष्टपदी साधक संग मुखुजलोत सासंग माल सगली कोत साधक संग भेटे बमान साधक संग प्रगट सुखियान साधक संग भुज ब्रह्म नेरा सासंग सबोत नेरा साधक संग पाये नाम रतन साधक संग एक उपर जतन साधकी महिमा बरने गौन पुरानी नानक साधकी शोभा ब्रह्मा है समानी साधक संग अगोचर मिलाय साधक संग सदा पर फुलाय साधक संग आवे बस पंचा सा संग अमृत रस पंचा सा संग में सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतुतावे सा संग अस्तित्व मन पावे साधक संग माया ते बिन सा संग नानक प्रभु सुप्रसन्न सा संग दुश्मन समीत साधु के संग महापुनीत सा संग किसम नहीं बैर साधक संग ना भींगा बैर साधक संग ना ही गो मंदा सा संग जाने परमानंदा।

और ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी का घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।

जाए अष्टपदी। मानु की टेक प्रीति सब जान, देवन को कह भगवान जिसके दिए राय अगाए बावन तृष्णा लागे आए। मारे रख एक आप मानु कह सुनाई हाथ, जिसका हुक्म सुखोए जिसका नाम र कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक बिघन ना लागा गोए। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सद व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पी।

जिसमें अपना कृपा करे सो सेवक किसते डरा जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरप्रसाद तब बुझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सुखम सोय स्थूल न के जन्मे न किश मरे अपने चलते आवि कराय आमन जाम दृष्टा दृष्टा गया गारी तारी सब सृष्टा पे आप सकल में आप अनक जुगत राज थाप थाप अविनाशी नाई कृष्ण खंड धारण धार्यो ब्रह्मांड लाख भेख पुर प्रताप आप जपायता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभा बंद सकल संसार दुरे धन बंद प्रभ के सेवक सकल उदार प्रभ के सेवक दुख भी सार ना पे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप है निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनो कृपा करे बड़ भागे नाम जब तामे विश्राम नान तिन पुर को उत्तम करमान जो किश करा सो प्रभ का रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभा हो वैसो हो हे करने हार पछाणा सोहे प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना शिव जित समाहे समाहे वे सुख निदान उनु

स्वंतर सो बाहर आनंद कटक व्यापर है भगवंत माया आकाश पायाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंदिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसिया गय तैसा कर्म पौन बाणी वह संतर माए चार गुण दसे समाहे तिस्ते भिन्न ही कोठाऊँ कृ प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत मह देख ससीर सूर नखे यात्र में एक बाणी प्रभु की सबको बोल लाए आब डोलक बबू डोल लाए सर्व कला करके लाए।

नानुम तन्मे विश्वास संदना का पेखंसा ब्राह्मण संदना का हृदय सब धर्म संदना सुने सो भजन सर्वव्यापी राम संग रचन जिन जाता जिसकी रहत सद भजन साधु सब कहत जो जो ऐ सोई सुख माने करण कराम नहार प्रभु जाने अंतर बसे बाहर भी यो ही नानक दर्शन देख समोही आप सद किया सब साथ तिस प्रभु ते सगरी उत्पात तिस भावेता करे विस्तार तिस भावेता एक अंकार अनकला लखी ना जाए जिस भाव तिसलाए मिलाए कब निकट कमन कहिया दूरा पिया पा भरपूर अंतर्गात जिसाप जनाए नानत जना बुझाए सर्वभूता प्रतारा सर्वनैना पेखण हारा सगल समग्री जागा थना आपन जस आप ही

शुद्ध मन सगल पवन की शुद्ध मन मुह चोटा ना खाए मन जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए।

प्रसाद। गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे कामे प्रियंग प्रयाशंद। चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती

प्रभा है, कह जलंग नाग है, कह मितो भांग है, मद पर शांत वह प्रसाद, मन मन प्रणाम गुण गर्म दार, मन मन प्रणाम गुण गनम दाम, हर बर गांज हर नर पर भांजे अन गण प्रणाम, मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड

है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्मवास है, जासके जास है, पिजान प्रया छंद। नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो ते तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे,

कीर्त कर्म के बिछुड़े कर कृपा मिल हो राम चार कुंट दह दिस पर में थक आए प्रभु की साम तेन दुदै ते बहारी किते न आवे काम जल बिन साह कुमलावती उपजे नाही दाम हर नहा न मिलिए साजन कत पाइए विश्राम जित कार हर कंतना प्रगटी पाठ नगर से ग्राम सर्व सिंगार तंबोल रस सान देही सब खा।

पंक्ति है, कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरे संतन की मन हुए रवाला। ये बावन अखरी का तुरा रहा वो पंक्ति कि मेरे ते एक कृपा कर दे दात्या तेरे संत जना मैं उन्हां दी सेवा च उन्हां ही चरणा की धूड़ हो जा। असल होवे ते नकल आउंदी है, जे असल ना होवे फिर नकल नहीं आउंदी। आप ये नहीं कहते भी असल नहीं हैगे, हां नकल हैगी सीगी, नकल है सी ताइयो तां भगत कबीर जी ने आख्या गज साडे तै तै धूतियां तेरे पायन तग गली जना जप मालियां लोटे हथ नबग हर कै संत न

दर्शन परसियाहे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।

0: श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख चाहे, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख चाहे, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख चाहे, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख चाहे।
1: धन गुरु तेग बहादुर सिंह धन नौ नित्य।

सब धाई होए सहाय। आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोब, चिंता लाए हमारी। सतगुर आयो शरण तुम्हारी, मिले सुख नाम हर सोब, चिंता लाए हमारी।

0: सर्वज्ञावन
1: हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तुम दाते हम मूर्ख
0: तुम चतुर से आए
1: तू सर्वकला का ज्ञाता माधो
0: हम ऐसे तुम ऐसा
1: माधो
0: हम ऐसे तुम ऐसा
1: हम
0: पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा रहा
1: तुम सब साजे
0: साज निवाजे जियो पिंड दे प्राण निर्गुणारे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मरवाना तुम करो बला बलो न जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला
1: तुम दान अटल सुल्तान जी जान सब जाचे
0: तुमने दान अटल सुल्तान
1: राख संतन के पाछे
0: कौन नानका है हवाला राग संतन के
1: गौड़ी महल्ला पन फिर कर
0: बैसो हर जन प्यारे सतगुरु तुम रे।